0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है।
1: मांगता
0: तो कौन मांगता?
1: चल

0: you, baby. Thank you. तो कौन मांगता?
1: जॉनी जॉनी, चुली का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हनी, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है। जॉनी जॉनी, चुली का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हनी, तू ही तो मेरी जान है।
0: हमको मेरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: डाल
1: ए ब्रदर, जरा जम के बजाओ। अच्छा मांगता है एंग्लो इंडियन टाइप है।
2: Thank you.

0: देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: हो जाए खुल्लम।

कृपा दैया, दाय उठाय लियो गिर नक पर बंसि बजावत देन चलैया, जगके मोहन मन में माये नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोरदार।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ आई एम सॉरी।

0: की किरने आई है,
1: बहुत अच्छे
0: खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है।
1: वाह वाह बेटा,
0: सुबह की किरने आई है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है।

0: क्या बात है संगीता जी, ग्रेट ग्रेट.
1: अच्छा
0: ये क्या था, मतलब ये आपका राग के बेस पे था?
1: राग के बेस में,
0: मतलब ये आप सिखाती है? ये क्लासिकल सॉन्ग था या बंदिश थी या क्या था? ये
1: एक भजन थी.
0: हाँ?
1: भजन एक
0: क्लासिकल भजन,
1: भाटिया राग के बेसिक में एक भजन है. तो पिताजी ने हमको कभी कभी भजन भी करो भगवान का कभी कभी, तो एक एक बंदिश जैसे सिखा देते तो राग बेसिक में.
0: अच्छा
1: तो
0: संगीता जी मुझे एक बात बताइए, आप जैसे जो प्रोफेशनल सिंगर्स है,
1: अच्छा अच्छा
0: क्लासिकल सिंगर्स की बात करो, उनका रियाज कैसा होता है? आप लोग की सुबह कैसी होती है?
1: सुबह से थोड़ा सा, सुबह उठते थोड़ा सा अपना नित्य कर्म करके थोड़ा पानी पी के थोड़ा लाइट लाइट खाना बोलते, जस्ट थोड़ी सी, कभी लाइट हैवी नहीं. तो उसके बाद हम रियाज चालू करते आधा घंटा एक घंटा, सुर साधना करते तीन सप्ताह.
0: आपका बताइए कैसी शुरुआत होती है?
1: सुर साधना तो वही सा बहुत टाइम करना पड़ता है, आकर में करना पड़ता है.
0: वो करके बताइए थोड़ा
1: सा. भैरव राग में कर सकते हैं. सा रे गा रे सा रे गा मा गा रे सा

0: मतलब ऊपर का भी रियाज करना है, नीचे का भी।
1: इसको बोलते मंद्र सप्तक मध्य तार, तीनों पे करते।
0: एग्जाम्पल
1: टाइप कब कर सकते, सुर साधना, मतलब सुर परफेक्ट लगने।
0: ये आपने तार सप्तक में किया,
1: तीन सप्तक गया एक मंत्र।

0: रे सा, वो मंद्र सा से जो मध्य सा से मंद्र सा तक लेने के लिए कि वो जो रहता है,
1: मतलब हम जैसे समझे
0: हाँ,
1: तो नॉर्मल से नीचे
0: नीचे
1: मतलब मध्य
0: अपना मेन जो साग अपना रे उससे जो सारेगा मा पा नीचे जो जाएगा सुर नीचे सा नी धा पा वो जो है वो उसको मंद्र सप्तक बोलते हैं।
1: okay.
0: कोई कोई खरज साधना बोलते
1: अच्छा।
0: वो और सा से सा तक जो है पा सा तक है वो मध्य बोलते, फिर मेरा हाई पिच सा से ऊपर जो जाएगी
1: अभी मध्य का करके बताइए

0: ग्रेट।
1: फिर जो अतिताप भी बोलते सा सा सा सा सा सा, ये भी जो उधर तक भी साधना एक होती है, बहुत डिफिकल्ट होते है वो।
0: और ऐसा कहते हैं कि अगर आपको तार सब तक जो आप बोल रहे हैं ऊपर हाँ। जाना है तो वो उसके लिए हेड वॉइस लगता है कुछ, सर का
1: सर का लगते पर बहुत एकदम ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि तो माथा भी दुखता है कभी कभी जो
0: हाँ?
1: खराब लग जाता है ना कभी कभी, थोड़ी सी वो माथा दुखना लगता है, वो भी ध्यान देना पड़ता है, वो सॉफ्टली करना पड़ता है, नहीं तो उसको भी ज्ञान लेना पड़ता है गुरु से, नहीं तो वो तार सब तक साधना पे माथा दुखता है, कभी गला पड़ जाती है, उसको बहुत सारी तकलीफ होती है।
0: आप कितने देर करती है, अगर आपका प्रोग्राम हो तो आपको कितना देर करना पड़ता है?
1: कम से कम, ऐसे तो संसार भी है, घर दार भी है,
0: इसलिए
1: तो पहले साधना बहुत हो गई, जब
0: पहले कब करती थी, कितने साल
1: पहले? तो कम से कम 5-6 घंटा हो जाती
0: थी। क्या बात कर रही हो, डेली
1: डेली कॉलेज वगैरह जो भी है 2 घंटा हो गया, बीच में टाइम खाना पीना दोपहर टाइम में भी जो रहा वो सब कर ले, फिर रात को पिताजी के साथ तबला संगत में बैठना पड़ता है 2-3 घंटा।
0: आपकी जिंदगी में संगीत कैसे आया?
1: संगीत तो संस्कार पे, पिताजी सीखे थे कलकत्ता से।
0: कहाँ से हो?
1: मैं ओडिशा से हूँ।
0: अच्छा,
1: ओडिशा भद्रक वाले सोरे खेरिया उधर से हूँ, और पिताजी कलकत्ता से सीखे थे, टीएल राणा जी, उनके से वो संस्कार पे सीखे थे, तो फिर उनसे हम लोग ने शिक्षा ग्रहण की है।
0: आपने क्या पढ़ा है?
1: मैंने सिंपल ग्रेजुएशन किया है।
0: उसके बाद संगीत में क्या?
1: संगीत में मैंने विशारद के बाद एमए किया है, एमए मतलब मास्टर ऑफ म्यूजिक।
0: हाँ।
1: और उसके बाद डॉक्टर में कोशिश कर रही थी, थोड़ा शादी हो गई, थोड़ा
0: अच्छा।
1: थोड़ा हो रह गया, अभी तो कोशिश चालू है वो भी कंप्लीट करने के लिए।
0: क्या बात है,
1: डॉक्टरेट करने के, डॉक्टरेट करने
0: हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, 100% हो जाएगी,
1: ईश्वर की इच्छा होगा वो भी हो जाएगी।
0: तो अभी रियाज चालू है क्या? अभी सिर्फ सिखाने में ही रियाज हो जाता है?
1: रियाज बगैर होगा नहीं, अपने को भी रियाज लगता है।
0: क्या होता है रियाज डेली करने से और न करने से?
1: न करने से ऐसा जिंदगी में संगीत ऐसा आ गया जो उसके बिना सब कुछ अधूरा हो गया ऐसा लगता है। सब तो कुछ है, संसार है, बच्चे है, सब कुछ है, खाना पीना मस्ती सब है, पर उसके बिना लगता है सब कुछ खाली खाली लगता है, कुछ रह गया ऐसा लगता है। रियाज करो तो लगता है तो सब कुछ हो गया ऐसा लगता है।
0: इंसान के जिंदगी में संगीत आने से
1: हाँ
0: इंसान में क्या परिवर्तन होता
1: है? परिवर्तन होता है, एकदम मन शांत होता है बहुत, और दुनिया में जो झगड़ा और शांति शांति वो उनके मन में आता नहीं है, ध्यान से निकल जाता है,
0: उसके परे निकल जाता
1: है। वो उनके अंदर संगीत ही भरा रहता है, रास्ते पे चलो, खाओ पियो, रोसे करो, अपने मराठ में सोई पाक करो, उसके अंदर भी हम भजन कुछ भी गाना गुनगुनाते रहते हैं, चलो बोलो सब तो
0: आपको है। मराठी गाना आता है कोई?
1: मराठी गाना तो
0: भजन
1: भजन
0: कुछ सुनाइए, दो लाइन
1: सुन।

0: वा अर्जुन तू शिकतोय गाणं का वडिलांकडनं शिकतोय?
1: वडिलांकडनं शिकतोय मी गाणं.
0: ओके,
1: त्यांच्याकडनं जेवढा टाइम भेटेल तेवढा त्यांच्याकडून शिकतो मी.
0: तुला काय वाटतं गाणं शिकलं पाहिजे का जे नॅचरल आहे तेच सफिशियंट आहे?
1: नाही, 100% गाणं प्रत्येकाने शिकायला हवं. ज्याला गाणं गायला आवडतं, ज्याला गाणं ऐकायला आवडतं, त्याने नक्की वेळ भेटला तर शास्त्रीय संगीत शिकायलाच हवं.
0: तू शास्त्रीय पण शिकतोय थोडंफार? तू सारेगामा वगैरे शिकतो करतो? सारेगामा टाइम मिळतो तुला?
1: तसा टाइम भेटत नाही रियाज साठी, पण युट्यूब वरून सारेगामा वगैरे असतात, छोट्या मोठ्या क्लिक अवेलेबल असतात क्लिप, त्याच्यावरून शिकतो. मग
0: म्हणजे युट्यूबचा फायदा खूप आहे का?
1: खूप, भरपूर युट्यूबचा फायदा. युट्यूबवरती सुद्धा संपूर्ण प्लेलिस्ट अवेलेबल आहेत. भरपूर सारे असे गुरु आहेत वेगवेगळ्या भारतातल्या वेगवेगळ्या स्टेट्स मधून, काही बंगाल मधून, काही एमपी मधून, त्यांनी त्यांची पूर्ण प्लेलिस्ट टाकलेली आहे. सहा पासून सुरुवात कशी करायची तर शेवट बंदिश वगैरे कसं करायचे हे सर्व.
0: बरं, आता मग थोडक्यात एक सांग, ज्यांना युट्यूबवर शिकायचं असेल त्यांनी काय सर्च करावं, त्यांनी काय तिथे डायरेक्ट टाईप काय करावं?
1: डायरेक्ट हिंदुस्थानी क्लासिकल
0: बिगिनर,
1: हा ट्युटोरियल जरी म्हटलं किंवा बिगिनर जरी म्हटलं तरी प्लेलिस्ट येते पूर्णपणे,
0: आणि ती फॉलो करायची.
1: हा, ती फॉलो करायची.
0: क्या बात आहे, आता सुंदर शॉर्टकट दिलायस तू. अच्छा, संगीताची अभि जाते जाते वापस, जिसे संगीत सीखने का उसके मन में रुझान हो.
2: अच्छा अच्छा.
0: जो गाता भी है.
2: अच्छा.
0: अपने दोस्तों में गाता है, बाथरूम में गाता है.
2: हाँ,
0: हाँ. अपने फैमिली में गाता है. लोग उसको बोलते हैं कि तू अच्छा गा लेता है.
2: हाँ.
0: भले ही उसे बोलते ना हो मगर उसकी इच्छा है,
2: इच्छा है
0: कि गाना गाना है. उसने रियाज कैसे करना है शुरू से एक बार वापस डिटेल में बताइए.
2: शुरू में तो पहले क्या होते, अपने आप जो बोलते आजकल ये यूट्यूब वगैरह जो है तो उसमें से लेके के सीख लेते हैं बच्चे लोग, ये करते हैं सीखते हैं. और खराब नहीं, वो भी एक मीडिया हो गया. आपके पहले जमाने में सीखने बाहर जाने का प्रॉब्लम ये है, कोई है कोई भी ऑफिशियली सर्विस में है सीख नहीं पा रहे, वो है बरोबर. पर मेरे इच्छा मन में जो मेरे गुरु की परंपरा में जो बड़े लोग बोल के गए अच्छा गाना है संगीत में अच्छा करना है, तो अच्छा गुरु से जो साधना 10-15-20 साल किए हैं साधना, उनसे जाके गुरु परंपरा में सामने सीखो. उनके गुरु का जो आलापना होता है, संगीत रागदारी होता है, वो सीखो, उसे रियाज करो, जाके वो आपका संगीत का प्रोफेशन का जो परफेक्शन आएगा, वो चीज बोलती हूँ मैं, मेरा ऐसा मानना है.
0: अच्छा, रियाज कैसे करें? आपने जो बोला था पहले हमिंग करो,
2: हमिंग करो,
0: एक बार बताइए वापस.
2: हमिंग करो, पहले सा करो, सा तो मेन सा पकड़ो, स्केल एक पकड़ो, पेटी है पहले बिगनर, सा पकड़ के टच रीड टच करे अपना पीच में, सा पा दे के सारे गमा करो, सा रे गामा, ये करते जाओ, अलंकार करते जाओ, तीन लय में तबला लगा के उसमें स्केल पे करो, तबला लगा के कोई भी ताल में उसमें अलंकार करो, ऐसा मेरा मानना है. तो फिर उसके बाद छोटे मोटे राग सीखना चालू करो, गुरु पकड़ो मैंने जी, उनके आइडिया से लेके करो, ऐसा मेरा इच्छा है, मन में ऐसा है. मतलब मैंने भी गुरु जी सिखाए थे तो मैं भी हिसाब से चल रही हूँ, मेरा मानना यही है.
0: ठीक है, अब आपको चारों से एक रिक्वेस्ट है कि जाते जाते आपका एक एक गाना सुनाए. आप एक क्लासिकल गाना सुना दीजिए, या वो आप बोले थे बंदिश, ये बंदिश क्या होती है?
2: बंदिश होता है कोई राग के, राग होता है ना उसके ऊपर एक बंदिश, वो नोटेशन में एक बंदिश होता है.

0: वाह बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपका गाना सुनने के बाद समझता है कि गाना सीखना जरूरी है और रियाज की
1: जरूरी है,
0: जरूरी कितनी ज्यादा है। आणि आता जाता जाता सुमिता जी आणि संजय जी यांचं एक ड्युएट ऐकूया जे खूप गाजतंय नाशिक मध्ये।

किसी को चाहे तो क्यों गुना समझते हैं लोग, कोई किसी की खातिर तरसे अगर तो हंसे।

माता। दिल पुकारा सुनने वाले सभी प्यारे भारतवासियों को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम। स्वतंत्रता का इतिहास आंखों के सामने रखकर हम सब बड़े हुए हैं। दोस्तों, 2 अक्टूबर इस तारीख को भारत के इतिहास में एक अलग पहचान है। इस दिन 2 नेताओं का जन्म हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर किसानों को सबसे महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि खेती ही भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला व्यवसाय है। गांधी जी ने अमन का नारा लगाकर शांति का संदेश दिया, जनता शांति से गुजारा करे, इस बात को महत्वपूर्ण बताया। दोस्तों, इन दोनों हस्तियों की प्रशंसा करने वाला एक गीत हिंदी सिनेमा में बड़ा ही प्रसिद्ध है, चलिए सुनते हैं।

स्वतंत्र भारत में रहने वाले हर स्वतंत्र सदस्य का आज के प्रोग्राम में फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस स्वतंत्र भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की हार होती है। सत्य शब्द उसके लिए प्रयुक्त है जो सृष्टि का मूल तत्व है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जो निश्चित है। सत तत्व को परमात्मा कहा गया है। सतयुग में अधर्मी असत के मार्ग पर चलने वाले रावण का वध राम ने किया। द्वापर युग में दुराचारी कंस का वध श्री कृष्ण ने किया। अधर्म असत की हमेशा हार हुए है। जहां असत है वहां अधर्म है, जहां अधर्म है वहां पराजय है। स्वतंत्र भारत की प्रजा संस्कारी हो, सदा सत्य के मार्ग पर चले, इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा दिया। यह नारा राष्ट्रपति पर लाया।

दोस्तों लता मंगेशकर ने गाया हुआ यह बड़ा ही अर्थपूर्ण गीत अभी आपने सुना। दिल ने पुकारा में आज स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र सदस्य के कर्तव्य नीति के बारे में बातें करेंगे। आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास। अभी जो गीत आपने सुना वो लिखा था उद्धव कुमार ने, संगीत से सजाया था जयदेव ने। दोस्तों क्रांतिकारियों ने कुर्बानी देकर देश को स्वतंत्रता दिलाई ये तो हम सब जानते हैं। झंडे को हम बड़े गर्व से सलामी देते हैं और राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं, बाद में धूमधाम से छुट्टी भी मनाते हैं, पर क्या इसे देश प्रेम कहा जाएगा? ये सवाल बड़ा ही जहरीला है। हमें देश के प्रति प्रेम चाहिए। जब हम रोज अखबार पढ़ते हैं तो पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है। देश के विकास के लिए योजनाएं तो बनी है लेकिन बेकारी कम हुई है क्या? सही व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचती है क्या? इन सारे सवालों का जवाब अगर खोजना है तो हम संविधान का आधार ले सकते हैं। संविधान में बताए रास्ते पर हर कोई चले तो अखबार की बुरी खबरें ना पढ़ने मिले। पर दोस्तों क्या करें, सारी बातें दूर रह जाती है और एक ही बात सबसे बढ़कर होती है, मैं और मेरा स्वार्थ। मैं और मेरा स्वार्थ अक्सर ये बातें क्या कहते हैं कि धन दौलत होती तो बंगला होता, धन दौलत होती तो गाड़ी होती, धन दौलत होती तो खुशियाँ मिलती, धन दौलत शोहरत दिलाती, धन दौलत ताज दिलाती। दोस्तों इसी बुरी बला के कारण इंसान सत्य का रास्ता छोड़ता है, अपनों को छोड़ देता है, बिखर जाता है। अंग्रेजों ने इसी नीति का फायदा उठाकर अपनों को पराया बनाकर भारतवर्ष पर राज किया। इतिहास गवाह है कि एकता की शक्ति सबसे बढ़कर है। स्वार्थ छोड़कर आपस में मिलजुल के रहना, यही आज के जमाने में देश सेवा हो सकती है। हमें देश के लिए शहीद तो नहीं होना है, वो काम तो देश प्रेमी कर गए हैं। हमें बस एक साथ रहकर स्वतंत्रता कायम रखनी है।

आप में मुझ में बसा है, उसे सामने लाना है, अपने खुद में छिपे हुए मैं को निकालकर हमें अपनी तरफ देखना है। स्वतंत्रता के बाद पीढ़ियां बदली, राजनीति बदली, नेता बदले, वैसे तो बदलाव जिंदगी का अहम हिस्सा है, जिंदगी की पहचान है। दोस्तों, एक बात कभी नहीं बदलती, वो है उसूल, चरित्र, नैतिकता। उसूल, चरित्र, नैतिकता, इन शब्दों की परिभाषा कभी नहीं बदलती। ये परिभाषा अगर बदल गई तो वो विश्व का अंत समय होगा। दोस्तों, मानव जब इन उसूलों पर चलता है, नैतिकता संस्कारों के रास्ते पे चलता है, तभी उसको खुशियाँ मिलती है, कामयाबी मिलती है, सफलता मिलती है।

दिल्ली पुकारा में आज पुकारा है प्यारे देशवासियों को, दोस्तों सच्चाई के रास्ते पर चलकर मानवता की मंजिल पाना ये हर भारतीय का कर्तव्य है। पिछड़े हुए मुसाफिरों को, दुखियारों को हाथ थाम कर अपने साथ लेके जाना, सहारा दे के चलते रहना, ये हमारा कर्तव्य है। तभी एक मजबूत राष्ट्र कायम रहता है। देश मेरे लिए क्या कर रहा है, इससे बढ़कर देश के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोच महत्वपूर्ण है। आशा है कि हम सब विश्वास के साथ एक होकर चले, शांति की ओर चले।

0: दोस्तों, हर किसी की पहचान अपने मिट्टी से है, अपने देश से है, अपने मातृभूमि से है। जहाँ से हम आए हैं उसी में मिट जाना है। इस मिट्टी का तिलक लगाकर चले तो ही सर ऊंचा रख सकते हैं, उसे भूले तो बस शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कितने ही युगों के बाद इंसान का जन्म मानव को मिलता है तो लोग अपने बारे में ऐसे बोले कि जिए तो ऐसे जिए, इस इंसान के जैसे जिए। मरने के बाद कोई अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता, ये समझकर चले दोस्तों तो अपना देश, अपनी मिट्टी, अपनी नदियाँ, अपनी धरोहर बचा के रखें, संभाल के रखें और अपनी स्वतंत्रता को सत्यम शिवम सुंदरम बनाए। इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा लूंगी, तब तक नमस्कार।
1: यार दीदी, यावेळेस मला तुझ्या वहिनीला खूप स्पेशल गिफ्ट द्यायचंय।
2: अरे मग दे ना, एवढा का विचार करतोयस?
1: पण काय द्यायचं तेच समजत नाहीये ना।
2: अरे रेडिओ विश्वास आहे ना,
1: म्हणजे
2: आता बर्थडे असो किंवा अनिव्हर्सरी, आपल्या प्रियजनांना आपण रेडिओ विश्वास वरन शुभेच्छा देऊ शकतो।
1: ते कसं काय?
2: फक्त 500 रुपयांमध्ये आपण या शुभेच्छा देऊ शकतो। तर लगेचच कॉल कर 8380016512 किंवा 8380016500 या नंबरवर।
1: हो, लगेचच कॉल करतो।
3: आशा भोसले यांनी गायलेलं वर्मा मलिक यांचं गीत आता आपण ऐकणार आहोत। मान गए उस्ताद या चित्रपटावरलं, संगीतकार सोनी कोमी।

0: है तुझको अगर दुनिया का डर छुप जा मेरी आंखों में,
1: है तुझको अगर दुनिया का डर छुप जा मेरी आंखों में।
2: बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम

0: मामा।
1: अरे भाई अपना हाल कभी सुधरेगा या पतला ही रहेगा?
0: पतला है हाल अपना लेकिन लहू है गाढ़ा, पोलाद से बना है हर नौजवान।

0: वाह वाह वाह वाह, पर वरी ये कौन सी ठुमरी है?
1: ये स्कॉटलैंड की ठुमरी।
0: स्कॉटलैंड की?
1: ये दो ही चीजें तो स्कॉटलैंड की मशहूर है, या ठुमरी या ठर्रा।
0: नशा आ गया। लेकिन मास्टर जी, ये ठुमरी है या ठर्रा?
1: ये ठर।
2: चमकाने जी,
1: ठुमरी चालू करता हूँ सेठ जी।
0: चलो नहीं, चलो नहीं, चलो नहीं
1: सेठ जी, आप जरा ठंडे हो जाइए सेठ जी।
0: फिर से

0: भविष्य आहे इलेक्ट्रिक वाहनांचे. दुचाकी किंवा चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी विश्वास बँकेचे ईव्ही लोन फक्त 8.99% व्याजदरापासून. पर्यावरणाची काळजी आणि बचतीची हमी. गो ग्रीन, गो विश्वास. अधिक माहितीसाठी जरूर संपर्क साधा 91300 20888 या क्रमांकावर.
1: नहीं हो सकता.
2: बोलो, ये झूठ है.
3: काश मैं इसे झूठ कह सकता दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है.
2: नहीं.
4: बास चीजें इंसान के बस में नहीं होती बेटा, भगवान के हाथ में होती हैं.

0: नमस्कार, मी अमृता सुभाष. तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ. तुमचं जगणं, तुमचा आवाज.
1: अब मान भी जाओ, तुम चाहे मुझे बुरा समझो चाहे मुझे अच्छा समझो, मैंने सब कुछ तुम्हारा प्यार जीतने के लिए किया. ये ना किसी गरीब का प्यार है, ना किसी अमीर का प्यार है, एक इंसान का प्यार है जिसने तुम्हें अपने दिल से प्यार किया.

मान के बिना मात्रे होते अक्षरदार, बापत कारी ही ईर्ष्या माथे बने मकार, नासे नमक हरामी समझो

असली सेठ भी असली नकली माल बनाए, ऊपर असली लेबिल अंदर नकली घी और चाय, पतलीन का बदल के नंबर